हर त्यावहि हर त्यावहि तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त पहे जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी

शरण परे की रखो हो शर्मा, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो वाच बेनती चाओ पई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की विच्छा,

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर परेशाने, घट घट के पट पट की जाने। जब युद्ध करख करा करतारा, प्रजा धरत तब दे अपारा। जब या करख कर तुहु कब हूं, तुम मैं मिलत दे तर सब हूं। जेते बदन सृष्ट सब धारे, आप अपनी बूझ उचारे।

के बेद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं पुपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप सुयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दोस्त।

राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो।

उपरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी।

उगत स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुगत प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है, चाचरी छंद अपंग है, अनंग है, अपेक है, अलेख है, अपर्म है, कर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अपूत है, अदूत है, अनाश है, उदास है, अदंध है, अबंध है, अपगत है, विरक्त है,

गुणगन प्रणाम। जल तल मुदाम अंशज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल तल अमंड।

पट पट की जान। जाबुद करक करा करतारा प्रजा तरत तब दे अपारा। जब या करक करत हो कबहू तू मैं मिलत दे तर सबहू।